सिर्फ हमें मैं को आंखों से पिलाते हैं. व्हाट ए ब्यूटीफुल लिरिक्स, व्हाट ए ब्यूटीफुल वॉइस, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट एन अमेजिंग एक्ट्रेस. रेखा शोज शी इज जस्ट नॉट ए ब्यूटीफुल फेस, शी इज एन अमेजिंग अमेजिंग एक्ट्रेस इन दिस मूवी. एंड फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस मूवी आई वॉज लाइक इन अ, इट चेंज माई परस्पेक्टिव अबाउट रेखा एक्चुअली. Anyway, so I'm very happy to share that we have a two little tiny supporter today morning supporting us. They are none other than Shiva and Indu's grandson, Krish and Kavi. So thank you so much, Krish and Kavi, for listening to us. So we are gonna play a song from Mr. India. It's called it's known as parody song. But basically, all the kids are requesting to get their ball back, which Sridevi has stolen from them. So let's enjoy this fun song. And I hope Chris and Kavi, you are enjoying the show. And this song is mainly for you both.

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। खैर छोड़ो, डरपोक ही के।